0: Assalamu alaikum, my name is Dawood Masood.
1: This is Atiq, no comment, Malik.
2: Fahad Matin.
3: Sufyan Siddiq, my car. Keep listening to Inspire FM.
4: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
5: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

मानने का मेरा टोटली और तरीकाकार है। और जो आदमी एक दफ़ा चीज़ को कहने पे कर देता है, वो मेरी ज़िंदगी को इतना आसान कर देता है कि मैं उसके लिए हर वक्त सोचता रहता हूँ, और मैं हर वक्त उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं उसको और ज़्यादा देना चाहता हूँ कि इसका ये हक बनता है कि मुझे एफर्ट, मेरी मेरा टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मेरा दिमाग नहीं ज़ाया कर रहा, मेरी ज़िंदगी नहीं ज़ाया कर रहा, और ये खुद से काम करता है, प्रोएक्टिव जो अप्रोच होती है, और अगर कोई गड़बड़ होता है तो बता देता है। इस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि लोग, कई लोगों को समझ नहीं आती मैं उनसे क्यों इतना उनको टाइम देता हूँ, क्यों उनसे लंबी बात करता हूँ, क्यों उनके मसले हल करता रहता हूँ। इसलिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो काम मेरी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, और फिर भी उनको मैं वो काम देता हूँ जो उनकी नेचर, अगर आप किसी की नेचर के ख़िलाफ़ कुछ भी करेंगे, जितनी मर्ज़ी लोग आपसे मोहब्बत करें वो काम नहीं चलेगा, जितनी मर्ज़ी लोग आपकी इज़्ज़त करें नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी नेचर वो चीज़ उनको करने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, थकावट होती है, तो वो नहीं कर पाएंगे लॉन्गर रन में। इसलिए वो काम लेके फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों के अंदर। और एक और बात, कुछ लोगों को ये पहले ज़माने में भी था और हमेशा होता है कि जी मेरा उनसे रिश्ता इसलिए कि मैं उनको कोई काम वगैरह दे देता हूँ। मैं काम आपको इसलिए देता हूँ, या किसी आदमी को भी, छोटे को, बड़े को, मर्द को, औरत को, बुज़ुर्ग को, मैं काम इसलिए देता हूँ कि मेरा उनसे इंटरेक्शन रहे, मेरा उनसे मैसेज चलता रहे, मेरी उनसे बात होती रहे, मेरा उनसे रिलेशनशिप चलता रहे। ये भी मेरा तरीका है ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, वरना जितना मैं बिज़ी होता हूँ या मेरा माइंड जितना बिज़ी होता है, रिश्ता पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा हाथ से। तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा कुछ, और वो काम मुझे ये लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, इसलिए आपको दिया है। और उससे जो इंटरेक्शन होगा, और उससे जो सिर्फ दो इंसानों में नॉर्मली अगर आप देखें तो एक दो चीज़ों की अगर ज़रूरत है, फ़र्ज़ करो, वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपको बंदे का एहसास ही नहीं रहता, वो ज़रूरत कहीं और से भी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपने सिर्फ उसको दी हुई है, तो उस बंदे का की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो हमेशा रहती है, किसी भी तरीके से ज़रूर रहती है। तो इससे भी रिश्ता कनेक्ट करने की हम इंसान कोशिश कर रहा होता है, बट इसके लिए दिमाग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिमाग समझते हैं आप? हाँ, वही जो हमने रख छोड़ा साइड पर उस कुरान की तरह, जिससे हम कभी कभी दुआ पढ़ लेते हैं, या शादी करा के बेटी के सर से गुजार दे, सर के अंदर नहीं डालते, उस बेचारी की सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरती है। तो दिमाग भी उसी, दिमाग का कनेक्शन भी, दिमाग भी उसी ने बनाया जिसने आपको किताब भेजी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो दिमाग से कनेक्टेड होके आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसके रिज़ल्ट आएंगे। ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। केओस थ्योरी में भी सब नूर का मंबा है, और ये नूर के सारे काम हैं, और नूर जितना आप कनेक्ट करेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी आसान होगी, और घूम फिर कर बात सारी की सारी वहीं आ जाएगी। और जब मुझे ये बात समझ आई कि जब सब कुछ घूम फिर के मुझे उसी के पास जाना है, मैं उसी को क्यों ना पकड़ लूँ डायरेक्टली, मैं जब सब का मालिक ही वो है तो मैं सोर्स में क्यों ना हाथ डाल दूँ, बजाय इससे मांगूँ, उससे, उसके बंदों से मांगूँ, मैं इससे करूं, उसके पीछे जाऊं, ऐसे करूं, मैं हलकान हो जाऊं, मैं सोर्स को ही क्यों ना पकड़ लूं जो सब कुछ देने लेने वाला है, बड़े से बड़ा काम भी और छोटे से छोटी चीज़ भी, उससे मांगते हैं और कोशिश हम करेंगे, और उसमें जब वो दे, क्योंकि उसने दिया है जो ऑल माइटी मैग्नानिमस ऑल नोइंग सब कुछ है, तो वो जब वो देगा तो उसमें बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। इंसान जब देगा तो वो इंसान जब भी देता है तो उसने कुछ लेना भी होता है, कुछ और मामलात भी होते हैं, दुनिया है, इंसान ऐसा ही होता है, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मांगना सिर्फ और सिर्फ रब से है, उसको पाने के लिए इंसानों के साथ जो डीलिंग करनी है वो सही होनी चाहिए, उसमें नीयत ठीक होनी चाहिए, उसमें खुलूस ऑनेस्टी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें गिव एंड टेक जो किसी का बनता है वो होना चाहिए, सच के ऊपर बेस करके होनी चाहिए। सच के ऊपर बेस करके कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज़ को, कोई भी बिजनेस चलाया जा सकता है। इसके जो इसके ऊपर चार शेर बिल्कुल सही बैठते हैं, हमने जितनी आज बातें की हैं, अगर ये चार शेर आप जब इनको गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा आज के शो का हक अदा हुआ। शो का हक अदा करने वाले हीरा सिंह जी हैं, मेहरबान लोग हैं, जितने भी आज हैदर जी आई, डॉक्टर साहब आई, तमाम लोगों ने मिलकर ये शो बनाया, और पता ही नहीं चला इन दो घंटों का, एनर्जी भी बहाल हो गई, कोई काम की बात भी आप लोगों तक, और कोई आर्काइव्स भी जो हैं जी लोगों तक पहुंच गए, कम से कम आवाज़ ज़रूर पहुंच गई। हमारे कुछ टेक्निकल इशू जा रहे हैं स्टूडियो में, हम आजकल उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी बेहतर चीज़ें इसमें से निकलेंगी। बस आपने काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मुलाकात होती है आप तमाम लोगों से इंशाल्लाह अगले शो में। खुश रहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा।

और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Tuesday, 9th of June for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Israeli airstrikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks. Russia's fuel crisis intensifies as Ukraine steps up strikes on occupied territories. Drug gangs cuckooing hundreds of homes a week, police warn. 300 migrants bound for UK kidnapped and threatened with kidney removal. Lives still at risk from unregulated baby sleep industry after BBC investigation. Driving test booking rules tightened after thousands of no-shows. Football regulator contacts West Ham over serious allegations against Sullivan. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये खबरें गलत हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो गया है। कुवैत में ईरान की जानब से अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद कुवैत ने जवाबी हमले किए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल की कॉल दे दी है। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Tuesday, 9th of June for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Israeli airstrikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks. Russia's fuel crisis intensifies as Ukraine steps up strikes on occupied territories. Drug gangs cuckooing hundreds of homes a week, police warn. 300 migrants bound for UK kidnapped and threatened with kidney removal. Lives still at risk from unregulated baby sleep industry after BBC investigation. Driving test booking rules tightened after thousands of no-shows. Football regulator contacts West Ham over serious allegations against Sullivan. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये खबरें गलत हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो गया है। कुवैत में ईरान की जानब से अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद कुवैत ने जवाबी हमले किए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को हड़ताल की कॉल दे दी है। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: सुन रहे हैं आपका, मेरा और हम सबका अपना रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफएम। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, There are two statements that are light for the tongue to remember, heavy in the scales and are dear to the merciful. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Glory be to Allah and His is the praise. And Allah, the greatest, is free from imperfection. Sahih Bukhari.

अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार की तशहीर करना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से राब्ता कीजिए। इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से राब्ते के लिए 01582481800।

0: तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कंफ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊँगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे ग़ुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ग़ुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूं जी आपके ग़ुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नज़र फ़ौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से बोलते कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूँ क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पांव उधर, एक पांव इधर, एक पांव उधर, एक पांव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज़्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं 3री जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही, यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के कयामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा हो के ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चो ओपन अप पेज 5। क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यहां टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हां लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया। तो जब कहा ना अर रहमान अर रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किस किस अल्फाज, किन अल्फाज से, अर रहमान अर रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर रहमान अर रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर रहमान के अंदर और दो होती हैं अर रहीम के अंदर। छुट्टी है ना अर रहमान अर रहीम में, तो फिर बिगाड़ का सारा सामान इन दो अल्फाज में, जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है, तो फौरन अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे, कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है। इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब अजीब सूरत है अल्लाह ताला की, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक, है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं, अर रहमान अर रहीम। अब उन दोनों लफ्ज के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था, रहमान। और मुस्तकिल वाला कौन सा है? अब ये अजीब कलाम देखें अल्लाह का, रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में थी वो बात या अगली जिंदगी के बारे में? रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में, और उससे करीब तीन तरीन लफ्ज है और रहमान जो इस जिंदगी के बारे में है। मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है किस किस जिंदगी के बारे में, और उसके करीब तरीन लफ्ज कौन सा है? अर रहीम, जो हमेशा वाली रहमत, उससे करीब तरीन। क्या अजीब कलाम है, क्या तरतीब है इस कलाम की। रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक। अच्छा, शुरू रुबूबियत से रब, इंतहा मालिक से, और दरमियान में दोनों के क्या रहमत, यानी ये कभी मत समझना कि वो तुम्हारा, ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है। लेकिन इन दोनों अल्फाज से डर लगने लगता है, लेकिन जब डर नहीं लगने लगे तो उस जितना गहराई में इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। इसके बाहर बाहर अथॉरिटी है और अंदर अंदर मोहब्बत है, रब मालिक रहमा। अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब जल्दी से इन तीन आयात को मैं कम से कम आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, ये बहुत आसान है समझना। दीन से शुरू बात करते हैं। दीन अरबी में कहते हैं फैसले को, फैसले को। दीन अरबी में ऑल्सो उसको भी कहते हैं किसी से आपका मामला हो रहा हो ना, और उस मामले को मुकम्मल किया जाए, मेरा मामला तय हो गया, उसको भी दीन कहा जाता है। कमाया था दीन तो दान, जैसे तुम दूसरे से मामला करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा, ये अरबी की कहावत है। अच्छा, अगर शदीद मोहब्बत का जिक्र है अर रहमान अर रहीम में तो उसका मुतजाद क्या होना चाहिए? नफरत, अजाब। अगर एक तरफ मोहब्बत है तो उसका मुतजाद अजाब होना चाहिए, लेकिन उसके मुतजाद में दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और दीन क्या है? इंसाफ, फैसला। और फैसले से क्या, किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? इंसाफ की तरफ। तो अगर आप इस तरह समझ लें कि जो मोहब्बत है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और नफरत क्या है? मनफी है, तो अदल कहां पे होगा, इंसाफ कहां पे होगा? सिफर, ना मोहब्बत ना नफरत। अल्लाह ताला ने इतनी, उसकी इतनी अजीम रहमत है, उसने नफरत का, अजाब का, गुस्से का जिक्र भी नहीं किया, मनफी का जिक्र भी नहीं किया। अगर ये पूरा चार्ट होता ना, तो एक तरफ पॉजिटिव में अर्रहमान अर्रहीम होता, और दूसरी तरफ अजीज़ उल इंतकाम होता, अल मुअद्दिब कुछ होता, लेकिन वहां भी सिफर तक लेके मनफी तक नहीं लेके गए, सिर्फ दीन की बात की, यानी इंसाफ की बात की। और ये क्यों की? क्योंकि असल चीज जिससे हमें डरना है ना, वो अजाब नहीं है। फातिहा के मुताबिक असल चीज जिससे डराया जा रहा है वो इंसाफ है, वो इंसाफ है। इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक, एक रिवायत में आता है, जिससे उस दिन एक सवाल भी पूछ लिया गया वो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला की रहमत उस दिन पता है क्या है? कुछ लोग होंगे जिनकी किताब उनके सीधे हाथ में होगी, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करें। अच्छा, जिसकी किताब उसकी सीधे हाथ में है ना, उसके बारे में क्या कहा है कि वो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचता है और वहां अल्लाह ताला ने कहा है फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब से मुराद रिवायात से मिलता है कि फरिश्ते किताब खोलेंगे भी नहीं, गुजरने देंगे, जी हमें बताया आप जाएं, क्योंकि आपके कौन से हाथ में किताब है? अब आप नर्वस, आपके हाथ में तो किताब है, लेकिन आप कहें अगर आप ये पेज 130 पे जाएं तो उसमें एक हज है, वो ज़रूर देख लेना। जैसे आपका पेपर होता है ना, उसमें आपने बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए होते हैं, लेकिन एक सही जवाब दिया होता है, तो उसको आप पहले दिखाते हो टीचर को, ये वाला ये चेक करने ज़रा, ये वाला। अच्छा, ये अगर पेज 503 पे जाए तो वहाँ एक शायद एक लैलतुल क़द्र थी मेरे ख्याल है उसमें एक, तो आप, लेकिन वो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? आप जाओ, आपके ख्याल है, निकलो, कोई बात नहीं। अजीब सा। दूसरी तरफ कहा है किसी की किताब उन लोगों के उल्टे हाथ में होगी, अल्लाह हमें उनमें से ना करे, और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है, जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा, मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल लिया गया, तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम माने थे ना, वो सारे निकल गए और क्या रह गया, मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहा, मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, ओके, दो चीजें, यौम, यौम किसे कहते हैं, ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो,
1: लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते,
0: आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज़ है जो आप जो भी कर लो, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज़ है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है, वक्त। और वहाँ उसने उस एक चीज़ की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक थैला हो और मैं कहूँ ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है, मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली, उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात एक ही मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिकियोम, मालिकियोमिद्दीन, सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझ लें। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे, मालिक और क्या, मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है, मालिक, गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताए, बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहाँ ज़रूरी हैं, समझ ले क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं इस जूते का बादशाह हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं जूते का मालिक हूँ। मैं घर का बादशाह हूँ या मालिक हूँ, मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूँ, मालिक हूँ, मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूँ, क्या बात सामने आ रही है। बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है, बादशाह। अब एक और फ़र्क भी समझ लें, अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नज़र है, हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है? आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है, ऐसा ही है ना? आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम में मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आ गए हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है? अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता मेरा दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं, क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है, क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है, क़यामत के दिन में आसमान फट के खोल रहा है, क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा लिया जा रहा है कि नहीं? ला युगातिलु सगीरतन वला कबीरा, ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुताल्लिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुताल्लिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिकियों में दिन में। आपके जाने से पहले हमने तीन आयात का मुताला किया है इस वक्त, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक क़ुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ़, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस ये तीन आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो मैं जान जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है, उसका नाम अल्लाह है, उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज़ का, तमाम इंसानियत का, अज़ल से अब तक, अलआलमीन। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा मालिक यौमिद्दीन। एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई, जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूं, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमइन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे। दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया, ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। और इसके बाद जहाँ से हम कल बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो होगी कि अगर ये कोई बात सुन ले तो वो किस नतीजे पे पहुँचेगा, यानी इस सारी बात का, ठीक है आपने ये बातें सीख ली अल्लाह के बारे में, सो व्हाट, फिर क्या, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन तीन आयत का नतीजा है, कि जो इन तीन आयत को समझ ले वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और ख़ुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया, कहा है इय्याका नअबुदू, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं, यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पर कल मुलाकात होगी।
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: Jahan pe basketball games aur bade bade matches wagaira hote hain na, usne wo pura stadium book kiya. Vaade kya kar raha tha? Is saal tumhari sari khwahishain Jesus puri kar dega. Kya chahiye tumhe?
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. My name is Atia. I'm from Luton.
6: My name's Yasmin. I'm from Bedford.
7: My name is Shadia. I'm from Luton.
8: My name's Nadia. I'm from St. Albans.
9: I'm Mispa. I'm from Luton. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
10: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
12: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
13: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn, every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire, exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
14: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
15: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
16: But
15: it costs £10 per inch.
16: And that's too expensive.
15: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
16: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
17: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
18: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Last time on Akhri Mojza.
0: उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो, इसलिए इबादत करो ये नहीं कहा गया। कहा ईया का नाबुदू, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं। यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं।

کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، رب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں پانچ معنی ہیں. کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا، پانچ میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے دو کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی تین کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. پانچ معنی ہیں لیکن دو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ دو کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے. لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی دو قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں پانچ معنی ہیں لیکن اس میں سے دو معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن تین مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے تین مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ تین مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تین مزید کیوں ہیں اور وہاں تین کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے، میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا فوراً؟ پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہطعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں اللہ ہمیں مجرموں سے میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الا شیء النکر، یوم یدعو الداعی الا شیء النکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے. پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت، یعنی ان پر الزام لگایا کہ کپ ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا. تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا، ما کان ان یاخذ اخاه فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سولیزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا.
फिर भी उन पर रिमते करता रहा। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो, आप किसी भी कानून से आए हो, किसी भी आइन से आए हो, एक दिन सबको एक ही कानून के तहत जज किया जाना है। वो क्या है? मालिक यौमी अद्दीन। अब सख्ती हो गई। जब सख्ती हो गई तो नरमी वाले तीन मायने निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर रब और वहां पर मालिक की बात समझ में आ गई। तो ये चीज, ये भी बारीक सा तनासुब है कि रब के साथ अलआलमीन और मालिक के साथ यौमिद्दीन, सुभानअल्लाह। अच्छा, अब आके मैंने आखिरी बात आपसे रात की थी और कल की थी दोपहर को, कि अब इन तमाम बातों का जो अल्लाह ताला ने इन तीन आयात में कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब इसका एक नतीजा निकलना चाहिए। और कुरान इस पहली सूरत में ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है, इन तीन आयात में तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया, लेकिन इस पूरे कुरान का जो मकसद है ना, उससे भी हमारा तारुफ हो रहा है। कुरान की हर सूरत में बहुत ज़्यादा हिदायत हैं, लेकिन फातिहा में पूरे कुरान की हिदायत का खुलासा है। और उस खुलासे में से एक अहम बात यह है कि इंसान को खुद फैसला करना है कि वो अल्लाह ताला का बंदा बने, यानी शौरी तौर पे, और ख़ुद मुख्तार होके खुद ये फैसला करे। उस पर यह फैसला किसी की तरफ से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ला इकराह फी दीन, दीन के मामले में आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आप जितना भी बच्चे को फ़र्ज़ करें तरबियत कर लो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, एक अभी उस पर नमाज वाजिब नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई, एक दफ़ा उसकी उम्र हो जाए और फिर वो आपके डांटने डपटने से नमाज पढ़े, तो उसकी नीयत क्या थी? नीयत करता हूँ चार रकत नमाज अम्मी की वजह से, अल्लाह अकबर, यही नीयत थी ना? हमारे दिन ने क्या सिखाया? अमाल की बुनियाद, अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है? अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो उसकी नीयत अल्लाह की थोड़ी रही, नीयत तो आप थे ना, नीयत तो किसी का प्रेशर था। तो शुरू से ही अल्लाह ताला ने क्या कहा है, यहाँ तक कि अल्लाह, क्योंकि वो रब है, वो फोर्स कर सकता है, वो ज़बरदस्ती भी करा सकता है। पुलिस वाला आपसे गाड़ी रोड पे ज़बरदस्ती करा सकता है, आपको कहता है कि रुक जाओ तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको इशारा करेगा रुको गाड़ी, आपको रुकनी पड़ेगी, स्लो करने को कहेगा स्लो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला भी इसी तरह आपको रुकवा सकता है, और अगर नहीं रुकोगे तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका कोई ना कोई नतीजा उसी वक्त आपको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस दुनिया के निज़ाम में एक आज़ादी दी है, और उस आज़ादी से इंसान खुद अपनी आज़ादी से कहे इयाका नअबुदू, इसीलिए कहा उबुदू नहीं कहा, उबुदू कहा होता अच्छा आप इबादत करो, वो हुक्म होता अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इयाका नअबुदू। अल्लाह ताला ने अब हमारे अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया, हम तेरी इबादत करते हैं। ये भी एक अजीब बात हुई, पहले अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से आयत तो है, लेकिन अल्फाज किसके हुए? अगर हम कहें हम तेरी ही इबादत करते हैं तो किसके अल्फाज हुए? हमारे अल्फाज हुए। कुरान का एक बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक बात हो रही है, एक मुकालमा हो रहा है, और अब हमें उस मुकालमे की शुरुआत हो गई है। अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं। जिस तरह आप किसी की बात सुनते हो और आप बात सुनने के बाद आपका रद्द अमल होता है ना, फिर आप उसका जवाब देते हो, आपके जहन में कोई बात आती है तो आप कहते हो। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में कोई बात आनी चाहिए और वो आपके मुँह से निकलेगी। तो जो बात नेचुरली मुँह से निकलेगी इस फातिहा के अंदर, वो क्या है? इयाका नअबुदू। अच्छा, तो ये पहली बात तो मैंने बता दी, जिस नतीजे पर इंसान खुद पहुंचे। यहाँ पर भी एक और, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाएगी। मैं जब इस्लाम के बारे में सोच रहा था कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे नहीं उस वक्त न्यूयॉर्क में, कॉलेज में मैं कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी, तो सोचने का मौका मिला कि अगर मुसलमान हूँ भी तो क्यों हूँ, क्या इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स वालदैन मुसलमान हैं,
میرا جو دوست ہندو ہے اس کے والدین ہندو ہیں تو اس وجہ سے وہ ہندو ہے, تو وہ تو کوئی عیسائی فیملی سے آیا ہو تو وہ عیسائی ہوگا, کوئی یہودی ہو تو وہ یہودی ہوگا, میری فیملی مسلمان ہے پاکستان سے ہیں تو میں مسلمان ہوں, اس کا اسلام کے حق ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے نا, ایک تو ہے کہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں, شرک کرتے ہیں, پھر ایک الحاد ہے. الحاد کیا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں, میں کسی خدا کو نہیں مانتا. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی ایک کامن, ان میں ایک مشترک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتا تو اتنی ناانصافی کیسے ہوتی. تم کہتے ہو یہ خدا بڑی محبت کرتا ہے, اس کو الرحمن کہتے ہو, تو یہ جو بچہ کینسر کی وجہ سے مر گیا, یہ جو ماں مر گئی کار ایکسیڈنٹ میں, اس کا بچہ بھی رو رہا ہے, یہ کیسا الرحمن ہے؟ اس کو رحمت کہتے ہیں؟ اس قسم خدا کو مانتے ہو تم؟ اور تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس خدا کے اندر رحمت نہیں ہے, تم کہتے ہو رحمت ہے, مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی, اس کی ہزاروں مثالیں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس خدا یہ جو ہے یہ عدل کا مالک ہے, یہ عدل کرتا ہے, مجھے تو کہیں عدل نظر نہیں آتا. جو لوگ بزنس میں چیٹنگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, رشوتیں دیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں. جو دیانت داری سے کام کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, رشوت نہیں کرتا, ملاوٹ نہیں کرتا, وہ کہا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو اپنے پی ایچ ڈی پیپر میں کہیں اور سے کاپی کر کے ادھر ادھر سے کر کے سبمٹ کر دیتا ہے, اس کو پیپر مل جاتا ہے, اس کو ڈگری مل جاتی ہے. جو اوریجنل کام کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جس کے پاس سفارش ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے, جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں تو ناانصافی کی جیت ہوتی ہے زیادہ تر. تم جتنا بھی کہتے رہو کہ یہ اگر خدا واقعی اتنا انصاف کرتا ہے, تو اس کی ایک عام سی مثال ہے, اگر ایک انسان جان بوجھ کر غلط وجہ سے ایک دوسرے انسان کا قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے ایک جان دی ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ اس کی بھی جان لو. لیکن اگر ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کر دے, ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کرے, کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ قتل کرو گے نا. ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو؟ جانے اس نے 100 لی, لیکن آپ تو اس کو ایک ہی دفعہ سزا دے سکتے ہو نا, تو یہ انصاف تھوڑی ہوا. تو دو بڑے بڑے جو اشکال, دو بڑی شکایتیں آتی ہیں خدا کے کانسیپٹ کے خلاف, اللہ کے خلاف. وہ ایک ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے, اس میں رحمت کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی. اور تم کہتے ہو کہ یہ عدل ہے, یہ انصاف کرتا ہے, مجھے تو انصاف نظر نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک رب کو مان لے, ایک الہ کو مان لے, جو ہر معاملے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, اس کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس کی حکمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس کے عدل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے نا, کیونکہ اگر کمی ہوئی تو خدا کیسا ہوا پھر, رائٹ؟ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد الرحمن رکھی, العدل رکھی. پہلے اپنا نام بتایا الحمدللہ, پھر بتایا تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی. پہلا, یعنی پہلا وصف اللہ کا, پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب. رب یعنی اس تمام رشتے کی بنیاد, میری تمام زندگی کی بنیاد, انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان, وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے نا, تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے. اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن. یعنی اس اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کس چیز کا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے. اچھا, اس رب نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا وہ دو طرح کی ہے, ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت میں چھپائے رکھوں گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. اب کیونکہ وہ رب ہے, اس کی پوری اتھارٹی, اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی,
क्या तुक थी, अगर वो मुझे सेंस समझा दे कि आपने क्यों किया, कि कुछ रहमतें ज़ाहिर हैं और कुछ रहमतें बातिन हैं। आप कहो कि किसी की बीमारी हुई है तो वो तो अजाब में है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई क्या है, रहमत है। वो मुझे नज़र नहीं आ रही, अब मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं खुदा से कहूँ ज़रा मुझे भी दिखाएं ज़रा क्या रहमत थी इसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप पहली बात भूल गए, क्या है वो आपके लिए? रब। और रब के होने के नाते उसको कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपको समझाए कि मैंने ये फैसला क्यों किया। देखें, अगर जज या पुलिस वाला आपको रोकता है ना, तो आपको क्यों रोका मुझे, पता नहीं है मैं काम पे जा रहा हूं, समझाओ जरा क्यों रोका मुझे। आप क्यों इस तरह बात नहीं करते जज के साथ, टीचर के साथ, पुलिस वाले के साथ? क्योंकि क्या होता है उसके पास, उसके पास अथॉरिटी होती है, तो आप उसकी अथॉरिटी के अंदर सरेंडर हो जाते हो, राइट? अल्लाह ताला के पास एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के तहत उसने कहा है कुछ रहमतें तुम्हें नज़र आएंगी, समझ में आ जाएंगी, कुछ रहमतें समझ नहीं आएंगी, लेकिन है रहमत फिर भी। सूरतुल कहफ में इसकी तरफ इशारा किया गया है, वो तीन वाक़ियात जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए हैं सूरतुल कहफ में, वहाँ भी यही तो बात की गई है ना, रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत थी। मूसा अलैहिस्सलाम को वो जब तीन वाक़ियात हुए उनको रहमत नज़र आई कि नहीं? वह तो नज़र नहीं आई। बाद में समझाया कि ये क्या था, ये रहमत थी किसकी तरफ से, मिन रब्बिक। तो ये रहमत और रब का ताल्लुक समझ में जब तक नहीं आएगा ना, तब तक इंसान पूछता रहेगा तुम तो कहते हो अर्रहमान है, मुझे तो रहमत नज़र नहीं आ रही। असल में तुम रब को नहीं समझे ना, इसलिए तुम्हें रहमत नज़र नहीं आ रही, असल बात यह है। दूसरी बात यह है कि वाकई इस दुनिया में नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे काम करने वाले लोग अच्छी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते हमेशा, और ये इस्लाम का दावा भी नहीं है। इस्लाम कबूल कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इस्लाम की हिदायत पर चल लो, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, सेहतमंद हो जाओगे, फैमिली में कोई ड्रामा नहीं होगा, पैसे का मामला हल हो जाएगा, सेहत का मामला हल हो जाएगा, सोसाइटी का मामला हल हो जाएगा, हर तरफ से नेमतें आएंगी तुम्हारी तरफ, बस अल्लाह की बात मान लो। अच्छा जी, मैं मानने को तैयार हूँ, क्या मिसालें हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात मानी, घर से निकाले गए, फिर आग में फेंके गए, फिर बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म किया, फिर सहरा में ये अच्छा बड़ा ज़बरदस्त रिलीजन है, इसको आप फॉलो करें, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम की तरह उनके साथ क्या हुआ था? औलाद छीन ली गई, सालों साल रोते रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी। तो आपकी कोई, आप कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ बेच रहे होते हो ना, तो आप बेनिफिट्स देते हो, ये आप ये लें तो आपका ये फ़ायदा होगा। इस्लाम की अगर आप सेल कर रहे हो, किसी को आप कन्विंस करना चाह रहे हो कि भाई आप इस्लाम में आ जाएं, क्यों आऊँ, क्या मिलेगा मुझे इस्लाम में आने से? और आपको ज़िंदगी जो है ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप सुकून आएगा सारी ज़िंदगी में। अच्छा, किताब दिखाओ अपनी, किताब खोल के देखिएगा, जिन लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया उनकी ज़िंदगी आसान है, मुश्किल है? मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल। ये कैसी सेल है? और सहाबा के बारे में सोच लो, जिस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया है, उसकी ज़िंदगी इस्लाम से कबूल करने से पहले उसकी फैमिली है, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी है, आराम से ज़िंदगी गुजर रही, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सोसाइटी है, जैसे ही वो मुसलमान होता है क्या होता है? उसकी फैमिली उसकी दुश्मन, उसके दोस्त उसको छोड़ गए, बिज़नेस वाले उसके साथ बिज़नेस नहीं कर रहे, बात उससे कोई नहीं कर रहा, उसे पागल कहा जा रहा है, उसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको सड़कों में मारा जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, सिर्फ एक फैसले की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से। यानी ये एक फैसला ज़िंदगी को आसान नहीं बना रहा, लगता है कुरान की रूह से कि जब कोई ये फैसला वाकई दिल से कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये नतीजा हल्के दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर वाकई ये बात समझ में आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा, इयाका नाबुदु। और क्योंकि ये फैसला बहुत मुश्किल है और इसके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर जो जहाँ जहाँ से इंसान को सपोर्ट मिलती थी ना दुनिया में, ज़िंदगी में, हो सकता है वो सारे रास्ते बंद हो जाएं।
इसीलिए अब कहीं से सपोर्ट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये फैसला किया है उसी से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया कि इसके साथ क्या बात जोड़ी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये दोनों चीज़ें आपस में साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये कहना आसान है, ये फैसला आसान नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर नमाज में इसी दावे की तरफ वापस आते हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। एक तरह से जो किसी के मुसलमान होने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का ख़ुलासा हम हर फातिहा में हर रकात में पढ़ते हैं। कहाँ से बात शुरू हुई थी, किस नतीजे पर हम पहुँचे, किस लिए हम मुसलमान हुए, इय्याका नअबुदु, और मुसलमान हुए और ये इबादत हमने कबूल की। ये इबादत जब हमने खुद ही अपने तौर पर आकर कबूल की तो फिर हमें इस बात का भी इतराफ़ करना पड़ा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और उसमें बस अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वो इय्याका नस्ताईन। ठीक है, तो ये बात, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तरफ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था रब ऐसा लफ्ज़ है जिसमें रिश्ता होता है, तो एक तरफ रब, दूसरी तरफ अब्द, दूसरी तरफ अब्द। अब अब्द के लिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी फ़ेल और इसम के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी दोहरा लेता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। फ़ेल में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, और इसम में क्या होता है, हमेशगी, दवाम, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसम, लेकिन हमारे लिए हमने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इसम, हमने क्या इस्तेमाल किया, फ़ेल। फ़ेल में क्या होता है, या माजी या हाल या मुस्तकबिल, और फ़ेल ऐसी चीज़ है जब आप कर रहे होते हो तो होती है, जब नहीं कर रहे होते तो नहीं होती। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ का मतलब है जब खा रहा हूँ तो हो रहा है, जब नहीं खा रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये खाता पीता है, अब मैंने इसम इस्तेमाल किया ना, अब वो सो भी रहा है तो खाता पीता है, समझ रहे हैं बात। हमने जब अपने लिए फ़ेल इस्तेमाल किया तो हमने एक बात का एक बात का हमने इतराफ़ किया यहाँ पर, और वो क्या है कि हमारी इबादत में ऊंच नीच होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ना होने के बराबर, कभी बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ेल में भी ऊंच नीच होती है और फ़ेल में हमेशगी नहीं होती। हमारे लिए हमसे हमेशा की इबादत मुमकिन नहीं है। आप सो रहे हो तो इबादत नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कह दिया हलाल कमा रहे हो तो काम भी कर रहे हो तो इबादत है। अपनी फैमिली के लिए आप ग्रोसरीज करने, दूध और ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हो, हलाल रोज़ी से अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहे हो, तो वो भी इबादत है। लेकिन उस वक्त आप शौरी तौर पर इबादत नहीं कर रहे, वो तो आप सिर्फ दूध लेने जा रहे थे, ब्रेड लेने जा रहे थे, रोटी ख़रीदने जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इय्याका नअबुदु में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है कि हमने ये दावा नहीं किया कि हम हमेशा हर लम्हे आपकी इबादत में होते हैं। ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, उस पर हम में से कोई पूरा नहीं उतर सकता था। लेकिन हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत कबूल करते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ी रूम आ गई, करते भी हैं और कभी कुछ ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर करते भी हैं, फिर कभी कोताही भी होती है, फिर करते भी हैं। और इस जो जो वसत है इसके अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो ये है इय्याका नअबुदु में फ़ेल का इस्तेमाल। ओके, हाँ, अगर तुम इबादत करो कहा जाता, वो ये बात तो मैंने पहले कह दी थी, अगर कहा जाता करो इबादत तो ये हमारा फ़ैसला ना होता, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता। और यहाँ बात हुक्म की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपकी अपनी कमिटमेंट की। अब यहाँ हम खालिसतन तेरे बंदे हैं, अगर ये कहा होता, यानी अगर कहा होता नहनु इबादल्लका खासा, हम तेरे बंदे हैं खास, सिर्फ नहनु इबादल्लका खासा, तो ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मतलब है मेरी जबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज ना निकलता जो आपकी इबादत के साए में ना हो, मेरे कदम कभी किसी तरफ ना चलते जो आपकी इबादत के तहत ना हो, मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूं, अब्द हूं। ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इय्याका नअबुदु, अच्छा अब इय्याका नस्ताईन की तरफ।